Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: तिमीलाई छोड जानु मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। म जहाँ गए तपाईँ मेरो मन पनि तिमीसँग हुन्छ।
1: रोबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: यदि मेरे याद आए मैं मल देखो चीने आपूल सफा।

करता है न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ हर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है पे, मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज

तो समझ ले, मैं बोलूँ का मैं आँखों से पढ़ ले, गेम के टॉप पे बैठा जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले। तुमसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, फिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: 89.6 megahertz.
1: Megahertz.
2: अब रङ थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेट नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वर श्री म्राप ठुङमा कृतिया धस्युगो जयमसी तथा नमस्कार लासु ठाफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेट तथा जीवनला क्षण गरेला श्रृंखलाला अङ्क 22 श्री रङ्गी स्वागत मुला लालन पटक याङ थे से गतिला लाग्री प्रार्थना लाला जुन याङ न तोला रङ न्यानमुला तसै याङ सी न्योदोगा प्रश्न चुहिन्दा तिगा परमेश्वर थामुला कि याङ द थे तोला युहन्न 5:30 नै रङ सेन तिगै लाबरी आखाम परमेश्वर आवासी सुम्बा अनसा निसाब लाबसी लामा नै लाब निसाब ठिक तमुला तिग दबिसम ङै मनमा अनुसार आइन् तर गदा पुई खावासे मनमा अनुसार ङै गे लमुला जब याङ रङदा ताङम शोभा प्रयास लला चुसे याङदा थेराङम तामला लिछ लगाव नबरे बाध्य लाबरे हमला जुन याङला लाग्री ज्याव आरे परमेश्वर याम हाव बुद्धि याङला रङलन बुद्धि भन्दा लानन गेन तामुला देन परमेश्वर से याङला लुइरी प्राय थेराङमा म्राप कदे बन्द लसुमुला जुन म्राप ज्ञान निवा याङसे हानि वा असफलता भोक्दिबा तबरी हमला याङसे मैजी वा चुतम सफल अतबरी याङ निराश तबरी हमला तसै याङ वास्तवरी खुसी तादोला तिग्दविषम चुला अर्थ परमेश्वरसे याङ द गल्ती लबरी ज्ञान कासुबा मुला थेन्दे रोदेन याङला लागी ज्याबा योजना मुला पहिलो राजा 17:7-8 तिगै दुई लिच्छा युल्री क्युई अतावसे थे सोङला क्यु क्युई हाजी तब परमप्रभुला चु वचन थेनी गरी दिन हाजी चु सोङ सुक्नसे बन्द नाप्द लामुला हाइमा हाइमा परमेश्वर से याङला लुरी सोङदा सुक्न ताला तिग्दा विषम रु सेमुला कि याङसे थे सोङ वा मिदा खाला जुन चु सोङसे प्रतिनिधित्व लामुला थेला सट्टा सन्दो तिकै मै मैङ्गो चु थेराङमा परिस्थिति ताबरी हमला जब रङ थेराङमा सम्बन्धरी मुस्युला जुन रङलाई लागि गलत मुस्युला परमेश्वर से रङदा थे ताम ताबरी माइसुबा ताबरी हमला ताकि परमेश्वर से रङदा फरक ज्ञामरी बोरबरी हमला रङला दात्यला परिस्थिति गे आलाबला कारण चु तबरी हमला कि परमेश्वर से रङदा रोला लागिरी तब अर्को ताम पङ्सुबा मुला थेन्दे रङसे विश्वासी थे अर्को कदम चलाव लस्यु वाली छ रोसे रङदा गेन मोलम मोलम पिन्सु मुला पहिलो राजा 17:9 डरेम झट्टन सिधोल्ला चारपत्री निसी थेरी च्यु यदा खुवाबरी गाई थे ग्लारी एउटा गोर्की विधवा द आज्ञा लभा मुला जब एलिया द परमेश्वर जे थेला पालन पोषण लबरी लगाव लस्युब छार ग्लारी निबरी आज्ञा पिनबन मुस्युला रोसे एलियादा थे पुरानो तामदा खाबरी लस्युबन मुस्युबा रङसे बन्द लस्युब म्राप देन छार तामरी पाइला चलाबारी पङ्जीब मुबा हाइमै हाइमैमा परमेश्वर से जानी जानी रङला लुइरी खडिरी ताइबरी पिन्छु मुला तिग्द विषम रो सेम मुला कि तिग्द विषम रो सेम रङ दत्ते जुन अवस्थारी मुस्युला थेनुन अवस्थिति स्युगो एफिसी 3:20 परमेश्वर से याङला गुङरी रङला शक्ति ज्ञान गे लमुला ओछे याङसी रिबा देन मायो भन्दा लानन पिनमुला परमेश्वर देन रङला लागरी याकर्की गेन योजना मुबा याकर्की योजना जेरी लानन आशिष रे समावेश मुला यसै जवदोना रङ थे पुरानो ग्लारी चिवरी सेमुबा तब दोना रोसे रङदा थे आशिषका दे पिनबरी असमर्थ मुसुला मिगदे प्राय रङदा मोसेबा देन सहज ताछेला ग्ला देरी कोरबरी सेम पराबल मुला जब याङ विकल्प पिनमुला याङ सम्भव त थेरी मुब छनोट लला सेम लाबा थे याङला याकर्की जबा थातागाई देहेन्दे थेन्दे मिगदे छार ग्ला जबा मुबगी ग्यारेन्टी अपिन्ना गन्दी दोना फरक दिसारी ग्याम्री निबरियन रिबुमलामुला परमेश्वर सिंह इन्द्रिय गतिला ग्यारेन्टी आपिन मुसुला याङ देन मुभाकी याकर्गी जक्खिन ग्यारेन्टी विवाह परमेश्वरला वचन रि मुभा प्रतिज्ञा गति हिन्दा रो याङ याङ विश्वास केम रब अपेक्षा लसु मुभा दृष्टिकोण से आइन्बा रो सेमुला कि याङ विश्वास केम रब अपेक्षा लसुला दृष्टि से आइन्बा जो सेमुला कि याङ छार ग्लाक्यर कदम चलाबला थेलिचा रोसे याङला लुइरी चु कदमला फाइदा गरी प्रकटला सिमुला भजन संग्रह 32 अधेला यहाँ यदा शिक्षा पिनला ए हाजिबा घ्यामे ब्रदोला सो यदा लोबला यहाँ यदा परामर्श पिनला थेन्दे ए फेरि नजर थाल्ला अनिश्चित भविष्य से राङदा लोङबरी पिन्छुगो राङला लागरी परमेश्वरला योजनाका दिदी भरोसा थान्छुगो सेमलाबा थेला लागरी रङ्सी राङदा आरामदायी ग्लाग्याम थारिङ बोरबरी प्रदीप गाई जहाँ राङ शुभा मुला राङला भविष्य परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा कदे जति नन उज्जाल मुला आमेन राङनीला जीवन री परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे राङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस् त त्यो समय रे यहाँ बिदा ताजी राङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
0: Time check. It's 7 PM.
1: अहिले साँझको 7 बजेको छ।